सभी समाचार के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा करेंगी। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज पश्चिम बंगाल दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये दिन

0: पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमरीका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमरीकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमरीका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। विश्व भर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. President Draupadi Murmu reached at her village Paharpur in Odisha's Mayurbhanj district today to celebrate her 68th birthday amid a warm welcome from local residents. Odisha Governor Haribabu Kambhambati and Chief Minister Mohan Charan Manji received the President on her arrival. Prime Minister Narendra Modi has arrived at Paharpur. The President will accompany the Prime Minister on a visit to her village and the two leaders will offer prayers at the sacred Santali Jahira and Ho Jahira groves. Later, the President and the Prime Minister will participate in a major public program at Rai Rangpur, marking 2 years of the Odisha government. Development projects worth over 47,000 crore rupees will be inaugurated and foundation stones laid across sectors including energy, infrastructure, healthcare, education and irrigation. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to the people of West Bengal on the occasion of Paschim Bongo Divas today. In a social media post, she said that the day marks a significant milestone in the state's history, reflecting the aspirations and resolve that ensured West Bengal remained an integral part of India. The Vice President said that on this day in 1947, a historic decision paved the way for the creation of West Bengal as an integral part of India. He said that West Bengal occupies a special place in the country's civilizational and national life. In a social media post, Mr. Modi said that this day celebrates a state that has made immense contributions to the country's history through literature, music, art, spirituality, science, trade, commerce and social reform. The National Testing Agency or NT has said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled for tomorrow. In a statement, the NT has said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The agency noted that more than 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces and administrators, have been deployed. The NT noted that multi-layered security framework has been put in place to ensure a fair and transparent examination. The Securities and Exchange Board of India, SEBI, has approved a series of reforms aimed at improving market efficiency, easing compliance requirements and strengthening regulatory frameworks across the financial sector. At the 214th meeting held

0: आंगन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा दीपा का
1: और मेरा यानी आपकी रेडियो लगे कल्पना का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर।
0: और दोस्तों हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, सपने सच हो इसके पहले आपको सपने देखने होंगे। सपने केवल कल्पना नहीं बल्कि हमारे जीवन के लक्ष्य हैं। लक्ष्य ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा दीपा, और यही जो सपने हैं हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए बड़ा सोचिए, लक्ष्य तय कीजिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए।
0: बिल्कुल।
1: अब देखो लक्ष्य की बात हुई है और अब हमारे कार्यक्रम में एक नया सेगमेंट भी जुड़ा है प्रश्न पूछने का, जिससे आप और हम बेहतर तरीके से जुड़ सके। तो आज का प्रश्न हम पूछ लेते हैं दीपा जी अपने श्रोताओं से, वो ये है कि आप जिस भी उम्र में हैं, अब आपके जीवन में आगे का लक्ष्य क्या है?
0: अरे वाह कल्पना, क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है तुम्हारा। और दोस्तों आप हमें अपने जवाब ईमेल करें fmgold@gmail.com पर, हम जरूर इसी अंक में, क्यों कल्पना, है ना, आपके जवाब शामिल करेंगे। और तब तक सुनते हैं ये प्यारा सा गीत

0: 20 जून है और हर वर्ष इसी दिन विश्व शरणार्थी दिवस रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। ये दिवस उन लोगों के साहस और संघर्ष को सम्मान देने के लिए समर्पित है जिन्हें युद्ध, हिंसा या संकट के कारण अपना घर छोड़ना पड़ता है।
1: बिल्कुल सही कहा दीपा, और इस वर्ष जो शरणार्थी सम्मेलन है उसके 75 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, जिसने शरणार्थियों के अधिकारों और सुरक्षा की महत्वपूर्ण आधारशिला रखी।
0: बिल्कुल सही कहा कल्पना। और दोस्तों, अनटिल एवरीवन इज सेफ इस वर्ष 2026 का संदेश है, अर्थात जब तक हर व्यक्ति सुरक्षित नहीं तब तक सुरक्षा का वादा अधूरा है।
1: बिल्कुल, और इस दिवस का उद्देश्य जो है वो ये है कि हमें मानवता, करुणा और सह अस्तित्व के मूल्यों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। तो दीपक, चलो अब आज हम भी ये संकल्प लेते हैं और अपने श्रोताओं को भी बोलते हैं कि वो भी हमारे साथ ये संकल्प लें कि भाई प्यार से रहेंगे, प्यार पाएंगे और प्यार बांटेंगे।

0: मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के हुनर होते हैं। कोई अच्छा गायक होता है, कोई कलाकार होता है दीपा जी, और कोई खिलाड़ी तो कोई विद्वान। लेकिन इन सभी हुनरों से बढ़कर एक ऐसा हुनर है जो जीवन को सरल, सुंदर और सफल बनाता है, और ये हुनर है हमेशा खुश रहना।
1: और मुझे लगता है तुम तो हमेशा रहती हो खुशी। हाँ बिल्कुल, खुशी केवल चेहरे की मुस्कान नहीं है दोस्तों, बल्कि मन की एक सकारात्मक अवस्था है। जो व्यक्ति हर परिस्थितियों में प्रसन्न रहना सीख लेता है, वो जीवन की कठिनाइयों का सामना भी साहस और धैर्य के साथ कर सकता है। खुश रहने वाला व्यक्ति स्वयं भी सुखी रहता है और अपने आसपास के लोगों को भी खुशी बांटता है।
0: क्या बात है। और देखो ना, आज के समय में लोग भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं उनके पीछे भागते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि छोटी छोटी जो बातें होती हैं उनसे ना परेशान हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। ऐसे में खुश रहने का जो हुनर है ना, वो हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए।
1: और खुश रहने के लिए दोस्तों संतोष, कृतज्ञता, सकारात्मक सोच और अच्छे संबंधों का होना आवश्यक है। दूसरों की मदद करना, प्रकृति और परिवार के साथ समय बिताना, योग और ध्यान करना आपकी आंतरिक खुशी को सदैव बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखो, खुश रहने वाला जो व्यक्ति होता है ना दीपक, वो सिर्फ अपने जीवन को बेहतर नहीं बनाता बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। इसलिए हमें

0: जो तुम मुस्कुरा दो, ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी धूल का फूल और गायक कलाकार थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ

कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: दीपा जी अपने दोस्तों को याद दिला देते हैं अपना प्रश्न जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में पूछा था कि भाई कुछ हमारे श्रोता जो है वो हो सकता है अभी जुड़े
1: हों।
0: तो आपके लिए प्रश्न ये है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन के अलग अलग पन होते हैं, बचपन होता है, युवापन होता है और वृद्धावस्था भी होती है, लेकिन हमेशा आपके पास आगे जीवन जीने के लिए एक लक्ष्य होता है, क्योंकि निरुद्देश्य तो किसी का जीवन नहीं होता। तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो आप हमें ईमेल करें अपना उत्तर और हम उसको अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और अब बात करते हैं, थोड़ी सी आपको जानकारी बढ़ाते हैं, भाई आने वाला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो ऐसे में एक ऐसी जानकारी है मेरे पास जो आपके बहुत काम आएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो योग से जुड़ना चाहते हैं लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो इस समस्या को दूर करेगी नमस्ते योग ऐप।
1: बिल्कुल, और जिसे भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा योग को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। दोस्तों, ये एक मोबाइल ऐप है जिसके अंतर्गत योग केंद्रों, प्रशिक्षकों और योग कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।
0: बिल्कुल, और इस ऐप में तरह तरह की योगासन, प्राणायाम और ध्यान से संबंधित जो शैक्षिक सामग्री होती है उसका समावेश किया गया है, जो उपयोगकर्ताओं को योग अभ्यास के लिए प्रेरित करता है। इसमें मौजूद फिटनेस ट्रैकर की सुविधा से कदमों यानी जो आप स्टेप्स चलते हैं और कैलोरी की निगरानी भी की जा सकती है कि भाई आप कैलोरीज कितनी बर्न हुई है, कितनी आपको करनी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो कि बहुत जरूरी है आज के समय। और साथ ही दोस्तों, योग क्विज और अन्य गतिविधियों के माध्यम से योग संबंधी ज्ञान बढ़ाने से ये ऐप जो है सहायता करता है। यानी नमस्ते योग ऐप योग को सरल, सुलभ और लोकप्रिय बनाने का काम कर रहा है, तो आप भी इसे जरूर जोड़ें और बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते रहें।
0: बिल्कुल, और हम तो यही कहेंगे दीपा जी कि भाई हम योग का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे।

0: कभी तेरा दामन। ये गीत अभी आपने सुना, फिल्म थी नीत हमारी ख्वाब तुम्हारे, गायक कलाकार थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी। बिल्कुल दीपा, और अब बात करते हैं एक ऐसी महिला की जिसने लिप्पन आर्ट और वेडिंग प्रोडक्ट जैसे पारंपरिक काम से देश भर में अपनी पहचान बनाई है। ढेर सारी मेहनत, अनोखी रचनात्मकता और आत्मविश्वास के दम पर इंदौर की युवा उद्यमी अदिति शाह आज सोशल मीडिया और हस्तशिल्प जगत में अपनी अलग पहचान बना चुकी है।
1: और दोस्तों, इन्होंने लिप्पन आर्ट, वेडिंग डेकोर आइटम्स और क्राफ्ट रॉ मटेरियल के क्षेत्र में इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद देश भर के ग्राहकों द्वारा पसंद किए जा रहे हैं। पहले अदिति ने छोटे स्तर से अपनी शुरुआत कर अपने जुनून को व्यवसाय में बदला। आज उनके सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स हैं और उनके वीडियो और उत्पाद सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं।
0: बिल्कुल, और उनके बनाए हुए हैंडमेड प्रोडक्ट्स की जो मांग है वो भारत के विभिन्न राज्यों से आती है, यानी ऑल इंडिया में ग्राहकों का जो नेटवर्क है वो उनका बन चुका है। वे आज क्राफ्ट रॉ मटेरियल के लिए विश्वसनीय नाम है और हजारों संतुष्ट ग्राहकों का विश्वास भी है उन पर।
1: इंदौर की अदिति शाह की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अगर हम अपने काम पर विश्वास करें और लगातार मेहनत करते रहें तो छोटी शुरुआत भी बड़ी सफलता में बदल सकती है।

0: ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे गाइड फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भोजन जो है हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, यही हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे स्वास्थ्य को आधार बनता है। शायद यही कारण है कि आज लोग अपने भोजन की गुणवत्ता और उसके स्रोत के बारे में पहले से कहीं अधिक जागरूक हो रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा दीपा, और इसी जागरूकता के कारण आजकल ऑर्गेनिक या जैविक खाद्य पदार्थों की भी चर्चा बढ़ रही है। कुछ वर्ष पहले की बात करें तो ये उत्पाद सीमित मात्रा में उपलब्ध होते थे, लेकिन आज आप देखो तो फल, सब्जियां, अनाज, दालें, मसाले और कई अन्य खाद्य पदार्थ हैं जो बाजार में आसानी से मिलते हैं।
0: जी हाँ, सही कहा कल्पना। और जैविक खेती में प्राकृतिक तरीकों को महत्व दिया जाता है और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के उपयोग को कम करने का प्रयास बहुत किया जाता है, और यही कारण है कि स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूक लोगों का रुझान इसकी ओर और हो रहा है।
1: अरे वाह, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम इसकी शुरुआत जो है अपने घर से भी कर सकते हैं। क्यों दीपा, अगर थोड़ी सी जगह हो तो वहाँ पे धनिया, पुदीना, हरी मिर्च या मेथी जैसे पौधे गमलों में भी उगाए जा सकते हैं। इससे ताजी सब्जियां, ताजगी और स्वाद के साथ एक अलग संतोष भी हमें मिलेगा। निश्चित रूप से ये ऑर्गेनिक जो फूड है उसके प्रति बढ़ती जो रुचि है, ये हमें याद दिलाती है कि स्वस्थ जीवन और प्रकृति के साथ संतुलन दोनों ही हमारे लिए जरूरी
0: है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसलिए भारत सरकार की परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY भी जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है, ताकि मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हो और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिले। याद रखिए, प्रकृति के करीब लिया गया हर हमारा छोटा कदम बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में एक सार्थक कदम बन सकता है।

0: बताऊं, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में और फिल्म का नाम है हाउस नंबर 44। और देखो दीपा, हमारे बहुत से श्रोता जो हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं और उन्होंने हमें ईमेल भी भेजे हैं। सुनील जी हैं, सुदर्शन मुखी जी हैं, इन लोगों ने हमें भेज रखे हैं ईमेल, इन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है। और हमारे एक श्रोता ने हमारे प्रश्न का उत्तर भी लिखा है, पढ़कर बताओ ना क्या लिखा है।
1: इन्होंने लिखा है कि आप दोनों बेटियों को राम राम, बुढ़ापे में थोड़ी कमी तो आ जाती है लेकिन फिर भी इंसान कोशिश करे तो लक्ष्य कोई भी हो यानी कि अच्छा होना चाहिए। जिंदगी में बदलाव जरूर आते हैं, उस पर हमें कायम रहना चाहिए। बच्चे अगर बात माने तो ठीक है, नहीं तो हमें खुद को बदलना चाहिए, उसी में खुशी महसूस होगी। शुक्रिया गौरी शंकर नागपुर।
0: गौरी शंकर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए हम बहुत अच्छी जानकारी अब देने वाले हैं। जानकारी क्या, आप हमें दोबारा से ईमेल करेंगे क्योंकि हम बात करने वाले हैं गर्मी की छुट्टियों की। जी हाँ, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए वर्ष का सबसे आनंददायक समय होती हैं, बड़ों के लिए भी होती हैं
1: और जिसका सबको इंतजार रहता है।
0: बिल्कुल। और जब परीक्षाएं समाप्त होती हैं तो छुट्टियों का इंतजार शुरू हो जाता है। इस दौरान बच्चों को खेलने, घूमने और नई नई चीजें सीखने का अवसर मिलता है। हम सभी भी बचपन की गर्मियों में जाते थे जब नानी के घर या फिर कहीं घूमने, तो उसकी बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हैं। तो दीपा जी, आपकी कोई याद है तो बताओ ना।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं कल्पना, मैं बताती हूँ। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि जब हम छुट्टियों में गए थे तो उस रात में बिजली चली गई। हम सभी घर की छत पर बैठे और नाना जी से पुरानी कहानियां सुनी। उन्होंने अपने बचपन के कई रोचक प्रसंग सुनाए कि कैसे वो स्कूल जाने से घबराया करते थे और छुट्टियां होते ही खुश होते थे। और नानी जी ने तो उस रात हमें कई भजन सुनाए और तब हमें पता चला कि नानी कितना अच्छा गाती हैं। तो हमने उन्हें कहा भी कि नानी आपको तो सिंगर होना चाहिए था, और इस बात पर नानी बस मुस्कुरा दी। अब तुम बताओ अपना कोई किस्सा।
0: अच्छा, क्योंकि मेरा जो घर है वो गांव में था तो हम मतलब खुद कहीं नहीं जाते थे, लेकिन हमारे घर बहुत सारे लोग आते थे और हमें सबसे ज्यादा इंतजार रहता था दीदी और उनके बच्चों के आने का। जैसे ही वे आते थे हम दिन भर आम के बाग में आम खोजते रहते थे, कभी जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ते थे और खजूर के लिए तो हमारे बहुत झगड़े होते थे। कभी तालाब में पैर डालकर बैठते थे तो कभी ट्यूबवेल की हौदी में भी हम खूब मस्ती से नहाया करते थे, बहुत मजे करते थे। बगीचे का हर पक्षी हमारा दोस्त होता था और हर पशु हमारा साथी, यानी हम परिवार के साथ प्रकृति के साथ का भी आनंद लिया करते थे।
1: नहीं नहीं, बिल्कुल सही, तुम जो बातें बता रही हो मुझे सब याद आ रही हैं। और तब कल्पना देखा जाए तो तब हमें ना गर्मी की फिक्र होती थी और ना ही धूप से काले हो जाने की। और हमारे श्रोताओं के पास भी हम जानते हैं बहुत रोचक किस्से होंगे, तो जल्दी से हमें ईमेल कर दीजिए अपने रोचक किस्से fmgoldga@gmail.com पर।
0: और इस अच्छी सी जानकारी के बाद अपने दोस्तों को सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत रोटी फिल्म से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में।

0: कल्पना, अब क्या इरादा है, कुछ खाने की बातें हो जाए?
1: बिल्कुल होनी चाहिए भाई, देखो घर आंगन कार्यक्रम है तो फिर खाने की बात तो होनी चाहिए।
0: दोस्तों जैसा कि आप जान

0: है कि आम को फलों का राजा कहा जाता है और इसकी मिठास का आनंद लेना भला किसको पसंद नहीं होता। और बाजारों में आजकल बहुत आम भी आए हुए हैं, ऐसे में क्यों ना आम से बनने वाली एक ऐसी मिठाई की बात या मीठे की बात की जाए जो खाने में स्वादिष्ट भी हो और पौष्टिक भी। तो आज हम अपने श्रोताओं को बताते हैं आम्रखंड के बारे में। जैसे श्रीखंड होता है उसी को कैटेगरी में आएगा आम्रखंड।
1: बिल्कुल, और ये बहुत ही स्वादिष्ट एक मीठा होता है। तो दीपा जी आइए जानते हैं कि इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। और श्रोताओं आप या तो इसको रिकॉर्ड करो या फिर अपने डायरी पेन से नोट करो, क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो इसके लिए आपको चाहिए 2 कप हंकड़ यानी कि अच्छी तरह छाना हुआ दही, 1 कप आपको चाहिए ताजा आम का गूदा, 2 बड़े चम्मच आपको पिसी हुई चीनी, 1/2 कप बारीक कटे हुए आम के आपको टुकड़े लेने हैं, और इसको सजाने के लिए आपको थोड़ा सा पिस्ता या बादाम लेने हैं, वो भी छोटे छोटे से कटे हुए।
0: और दोस्तों अब इसकी विधि भी जान लेते हैं। हंकड़, आम का गूदा और चीनी को अच्छी तरह से फेंट लें। जब मिश्रण एकदम मुलायम और क्रीमी हो जाए तब उसमें कटे हुए आम के जो टुकड़े हैं उनको मिला दें। अब इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। परोसते समय ऊपर से कटे हुए पिस्ता और बादाम जो भी आपकी इच्छा अनुसार हो डाल दें, तो आपका ये जो आम्रखंड देखिए कितनी जल्दी बन जाता है और स्वादिष्ट भी बहुत।
1: बिल्कुल, और दोस्तों देखो दही में जो है वो होता है प्रोटीन और कैल्शियम, वो बहुत प्रचुर मात्रा में होता है जो हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। साथ ही दही जो है वो पाचन में भी हेल्प करता है, और अगर आप इसको खाएंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, इससे आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। तो बिल्कुल आप इस फायदे के लिए भी इसे खाएं।
0: और बिल्कुल कल्पना, वही कहते हैं कि आम में विटामिन ए, विटामिन सी और कई एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी माने जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा दीपा। तो हम अपने दोस्तों से यही कहेंगे कि भाई जब तक आम का मौसम है आपको इस स्वादिष्ट और पौष्टिक आम्रखंड को घर पर बना कर रखना चाहिए, खाना चाहिए
0: और खिलाना भी चाहिए।
1: देखो मेहमान आए तो उनको अगर आप खिलाएंगे तो ये एक नई चीज हो जाएगी उनके लिए, फिर वो आपसे पूछेंगे कि भाई आपने इसे कैसे बनाया, तो फिर आप उन्हें बताओ कि भाई हमने इसको ऐसे बनाया है।
0: और सुना कहाँ पर?
1: रेडियो पर, घर आंगन कार्यक्रम में। तो आप जरूर बताइएगा और उनको भी बोलिएगा कि भाई घर आंगन कार्यक्रम आपको भी सुनते रहना है। तो दीपा देखो हमने इतनी मीठी मीठी सी रेसिपी बताई है, तो आप दोस्तों को सुना देते हैं एक मीठा मीठा सा गीत।
0: हाँ, और ये गीत है आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे। गायक हैं आशा भोसले, मोहम्मद रफी और फिल्म है एक मुसाफिर एक हसीना।

व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। अपने पैतृक गांव में राष्ट्रपति ने 68वां जन्मदिन भी मनाया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहाड़पुर गांव पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा किया। वे पवित्र संथाली जहेरा और होजहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारियां पुख्ता हैं। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्षीय थे। श्री मुखोपाध्याय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों में सेवाएं प्रदान की और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में भी कार्य किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। विश्वभर में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग।

0: of yoga events at 100 iconic locations across the country. Former senior IIS officer Dipankar Mukhopadhyay passed away in Kolkata last night after a brief illness. He was 76. Mr. Mukhopadhyay served in various media units at the Ministry of I&B and in News Services Division of All India Radio. He also served as AIR Special Correspondent in Singapore. He survived by his wife and daughter. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Brazil had come into the game under pressure after being held to a draw by Morocco in their opening Group C fixture. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 1:10 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म का। एक ही फिल्म कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत, खैर मकदम करती हूँ मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी कार्यक्रम एक ही फिल्म में। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम एक ही फिल्म जिसमें हम आपके लिए चुनकर लाते हैं समय के पहिए से एक फिल्म, और आज उस पहिए को थोड़ा सा पीछे घुमाएंगे और चलेंगे उस साल में जब आई सिनेमाघर में एक ऐसी फिल्म जिसने अपनी सादगी, अपने बेहतरीन संगीत और अपनी खूबसूरत वादियों से सबका दिल जीता। जी हाँ, साल 1971 यानी कि 1971। और आज हम बात करेंगे निर्माता निर्देशक विजय भट्ट की सदाबहार फिल्म बन फूल की। जी दोस्तों, बन फूल नाम सुनते हमारे सामने जंगल, हरे भरे जंगल दिखते हैं, चहचहाते पक्षी और नेचर का जो एक अछूता रूप है हमें वो नजर आता है। और इस कहानी का भी इसी तरह से एक यूनिक पॉइंट है। जी हाँ, जिस तरह से बनफूल हमने नाम सुना और हमें पहाड़, जंगल और वहां की खूबसूरती याद आई, वैसे ही इस फिल्म में इसकी जो प्लस पॉइंट था वो थी इस फिल्म की कहानी, और उससे भी बड़ी बात इस फिल्म की स्टारकास्ट। करेंगे इस फिल्म से जुड़ी हुई बातें, किस्से और गाने, लेकिन करते हैं शुरुआत इस खूबसूरत से गीत के साथ किशोर कुमार की आवाज में।

टॉप वन फूल, आज की फिल्म कार्यक्रम एक ही फिल्म में हमने आपको बताया कि इस फिल्म का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म का स्टार कास्ट। अगर हम इस फिल्म के सितारों की बात करें तो इस फिल्म में थे सदाबहार अभिनेता जितेंद्र, जंपिंग जैंग, बेहद खूबसूरत बबीता उनके साथ, और उनके साथ थे विलन के रूप में अपनी धाक जमाने वाले शॉटगन यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा। लेकिन इस फिल्म में जो शत्रुघ्न सिन्हा है उनका अंदाज थोड़ा सा अलग था। और इस फिल्म की अगर हम संगीत की बात करें तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के खूबसूरत से संगीत ने इस फिल्म को और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। तो दोस्तों, इस फिल्म के बारे में और भी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं खूबसूरत संगीत मोहम्मद रफी जी की आवाज में।

तो फिल्म बनफूल। इस फिल्म की एक खास बात आपको बताती हूँ कि इस फिल्म में जितेंद्र साहब का जो लुक था, जो उनका कैरेक्टर था, वो उनके उस वक्त जो उनकी फिल्मों में इमेज थी उसके बिल्कुल अलग था। जी हाँ, उस वक्त जितेंद्र जी मशहूर थे अपने जंपिंग जैक वाले शहरी इमेज वाले लड़के के रूप में, जो कि सफेद कपड़े सफेद जूते पहनते थे। लेकिन इसके इतर इस फिल्म में उन्होंने बिल्कुल एक सीधे साधे गांव के लड़के का कैरेक्टर निभाया है, जो कि मासूम जानवरों से प्यार करता है और पूरी तरह से वो जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसके करीब है। लेकिन जैसा कि इस फिल्म का नाम है बन फूल, यानी कि जंगल का फूल, अब जंगल की पृष्ठभूमि पर यह फिल्म बनी है तो जानवरों का होना तो लाजमी है। और इस फिल्म में जो जितेंद्र साहब का कैरेक्टर है वो दिखाया गया है कि वो जानवरों के बहुत करीब था। लेकिन आपको पता है इस फिल्म की शूटिंग के दौरान असली हाथी और भालुओं का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, और जितेंद्र साहब को उन जानवरों के साथ तालमेल बिठाने के लिए शूटिंग से काफी वक्त पहले वक्त निकाला और उसके साथ में उन्होंने थोड़ी सी दोस्ती की उन जानवरों के साथ, ताकि स्क्रीन पर जो उनकी दोस्ती है वो बिल्कुल असली लगे।

देखिए दोस्तों, जितेंद्र और बबीता की जो जोड़ी है वो इस फिल्म में कमाल की रही है। वैसे ये जोड़ी पहले भी फर्स्ट नाम की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम कर चुकी थी और इस फिल्म में इन दोनों के चुनाव के पीछे भी एक यही वजह थी, क्योंकि जितेंद्र साहब को विजय भट्ट जी ने ये सोच करके लिया कि भाई जो उनकी एक इमेज है उससे अलग उनको बनाना है, और वो कुछ एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते थे और उन्हें एक ऐसे हीरो की तलाश थी जो कि मासूम भी दिखे और उस पर जो दर्शक हैं वो भी भरोसा कर सकें। और जितेंद्र साहब से ज़्यादा मासूम उस वक्त तो कोई नहीं होगा, और इसी तरह से उन्होंने बबीता जी का चुनाव किया इस फिल्म के लिए। और वैसे भी बबीता कपूर उस वक्त बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थी और एक उनकी एक बबली और एक मॉडल इमेज थी, और इन्होंने इस फिल्म में भी शहर से आई एक लड़की का किरदार है जो कि शहर से गांव में आती है और वहां गांव में जो लड़का है एक गांव का उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होती हैं, उससे प्यार करने लगती हैं। और ये जो फिल्म है, इस फिल्म में जब बबीता जी को साइन किया गया था तो उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा हिट फिल्में दे रही थी, काफ़ी ज़्यादा उनका जो करियर था वो ऊंचाइयों पर था। लेकिन इस फिल्म में जब उनको साइन किया गया उसके बाद में, उस वक्त उनकी जो शादी की बातें चल रही थी रणबीर कपूर जी के साथ में और फाइनल थी ऑलमोस्ट, और यही वजह थी कि विजय भट्ट साहब चाहते थे कि बबीता फटाफट से उनकी फिल्म में काम करे, टाइम से पहले वो हो जाए ताकि उनकी फिल्म इफेक्ट ना करे उनकी शादी की बात से। और वही हुआ, क्योंकि ये जो फिल्म थी वो बबीता के करियर की आखिरी दौर की फिल्मों में से एक थी, क्योंकि शादी के तुरंत बाद ही उन्होंने फिल्में छोड़ दी और ये उनकी शादी से कुछ वक्त पहले की ही फिल्म है।

दोस्तों फिल्म बनफूल। इस फिल्म में जहां जितेंद्र और बबीता को बनफूल के लिए साइन करके बहुत से लोगों को लगा था कि ये जो फिल्म है कोई डिस्को या क्लब वाला डांस भी होगा जरूर इस फिल्म में, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो सफेद जूते पहनने वाले जितेंद्र जंगलों में धोती पहन के घूम रहे हैं और बबीता बिल्कुल सीधे साधे गांव के कपड़ों में नजर आई। डायरेक्टर विजय भट्ट ने उस दौर की सबसे ग्लैमरस जोड़ी को बनपूर्ण बनाकर पूरी तरह से कुदरत के रंग में रंग दिया था। वहीं अगर हम बात करें इस फिल्म के तीसरे कैरेक्टर यानी कि शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा जी के बारे में, तो उनके लिए तो मतलब क्या कहें, उनकी तो आवाज इतनी दमदार है और विलेन के किरदारों से वो सुपरस्टारों को भी टक्कर देते थे। इस फिल्म में भी उन्होंने अजय नाम के लड़के का किरदार निभाया जो कि बबीता के प्यार में पूरी तरह से पागल है। और इस फिल्म में कई शॉट ऐसे भी थे जब शत्रुघ्न सिन्हा डायलॉग डिलीवरी करते थे तो वो इतने कड़क अंदाज में, उनके तेवर इतने कड़क होते थे कि सेट पर जो लोग होते थे जो कि शूटिंग देख रहे होते थे या बाकी लोग होते थे वो उनकी खूबसूरत डायलॉग डिलीवरी को देखकर तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते थे। यहां तक कि खुद जो विजय भट्ट जी हैं वो भी यही उनका भी यही कहना था कि विलन होने के बाद बावजूद भी शत्रुघ्न सिन्हा साहब में एक अलग तरह का आकर्षण था और शायद यही वजह थी और यही रीजन है कि उनकी ये दमदार पर्सनालिटी की वजह से वो हमेशा सुपरस्टार्स हीरोज वगैरह सबसे ऊपर हो जाते थे।

दोस्तों आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। कल्याण मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं किशोर हिवराले, सुजाता और प्रतीक हिवराले के साथ। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हमारे साथ जुड़े हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीयू स्वर्णकार के साथ। वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन जी हमारे साथ जुड़े हैं। अगला संदेश आया दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से, मोहम्मद यासीन अंजान, साइमन नवाज, हसन बाबू अहमद मिश्रा नवाज और बेबी चाहत के साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं। ये जो संदेश है इसको भेजने वाले जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा के साथ। और ये अगला संदेश हम तक पहुंचाया है, इसको पहुंचाने वाले अजित भावसार जी और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सी जो बातें हैं जानकारी हम तक पहुंचाई और लिखते हैं कि राजेश खन्ना साहब की फिल्म हाथी मेरे साथी ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी और इसी वजह से जितेंद्र की सादगी से भरी फिल्म वनफूल का रिलीज होना एक बड़ा जोखिम था, लेकिन शानदार संगीत और कहानी ने सबको चौंका दिया और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। और भी बहुत अच्छी इन्होंने हम तक जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका। गांव नताना पंजाब से अरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता गीता हमारे साथ जुड़े हुए, सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वयाल, प्रथमेश सरवद, प्रणाली सानवी, हर्षदा देशमुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला और विशाल नवानकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव फड़ा से जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जी हमारे साथ जुड़े हैं। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू हमारे साथ जुड़े हैं। और गांव पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंदसोलिया, आदर्श सार्थक आलोक चंदसोलिया हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके साथ हैं संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये संदेश उन्होंने भेजा है मॉडल टाउन करनाल से। तो दोस्तों ये थे वो संदेश जिनके जरिए हमारे सभी श्रोता हम तक जुड़े और कार्यक्रम एक ही फिल्म जो हम आपके लिए लेकर आए हैं यादों के इस कार्यक्रम में, वनफूल फिल्म की ये छोटी सी दास्तान थी जो हम आप तक लेकर आए, सादगी संगीत और सच्चे जज्बातों से सजी हुई फिल्म। और ये फिल्म हमें बताती है कि सुकून आखिर कुदरत और मासूमियत में ही छिपा है। उम्मीद है आज का सफर आप सभी को अच्छा लगा होगा, आपके दिल को छुआ होगा और आप मुझे यानी प्रीति को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनी सादगी को हमेशा संभाल कर रखिए। तो चलिए छोड़े जाती हूँ आप सभी के लिए खूबसूरत सा गीत इसी फिल्म से, नमस्कार।

0: ਚ ਮਯੂਰ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹਾੜਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਅੱਜ 47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਟ UG 2026 ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੇਮਬੰਦ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਚੇਨਈ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮੀ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फैसल खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हमराह उड़ीसा में 47,600 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन FDC अद्वियात की तैयारी, फरोख्त और तकसीम पर पाबंदी आयद कर दी है। इम्तहान कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने कल मुनाकिद होने वाले नीट UG के दोबारा इम्तहान से कबल मुल्की मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खत्ते और सिक्किम में बाज मकामात पर कल तक शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील ने हेती को 0-3 3 गोल से हराकर पहली जीत हासिल की। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के आबाई गांव पहाड़पुर का दौरा किया और सदर जमहूरिया के साथ उनकी सालगिरह की तकरीब में भी हिस्सा लिया। वहां पहुंचने पर उड़ीसा के गवर्नर डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति और वजीराला मोहन चरण मांझी ने वजीराजम का इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के साथ वजीराजम नरेंद्र मोदी ने संथाली जहेरा गोशानी पीठ और हो जहेरा जाकर प्रार्थना की और गांव के अहम इदारे देखने गए, जिनमें हुनरमंदी के फरोग से मुतालिक मरकज और पहाड़पुर स्कूल भी शामिल हैं। मोहतरमा मुर्मू ने हुनरमंदी के फरोग से मुतालिक मरकज में तलबा के साथ बातचीत भी की। बाद में सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने एक अहम आवामी प्रोग्राम में शिरकत की, जो मोहन चरण मांझी की जेर क्यादत उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के सिलसिले में मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में 47,600 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा जाएगा और उनका इफ्तिताह किया जाएगा। इन प्रोजेक्टों में तवानाई, ट्रांसपोर्ट, सनती बुनियादी ढांचा, आबपाशी और पीने के पानी वगैरह समेत कई दूसरे प्रोजेक्ट शामिल हैं। सरकार ने 16 तरह के फिक्स डोज कम्बिनेशन FDC अद्वियात की इंसानी इस्तेमाल के लिए तैयारी, फरोख्त और तकसीम पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। अद्वियात के तकनीकी सलाहकार बोर्ड की जानिब से कायम करदा माहरीन की एक कमेटी की रिपोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने जायजा लेने का हुक्म दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन अद्वियात में दाफे अमराज का कोई उनसुर नहीं पाया जाता और ये सेहत के लिए खतरा साबित हो सकती है। जिन अद्वियात पर पाबंदी लगाई गई है उनमें एंटीबायोटिक पर मबनी कुछ अद्वियात, दर्द से राहत देने वाली अद्वियात और कुछ डर्माटोलॉजिकल अद्वियात शामिल हैं। भारत ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 2 रोजा मीटिंग का एहतमाम करेगा, जो पीर से शुरू होगी। इस मीटिंग की सदारत कौमी सलामती के सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। मीटिंग के दौरान ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के कौमी सलामती के सलाहकार और वफदों के सरबराह दुनिया को दरपेश गैर रिवायती सिक्योरिटी चैलेंजों के बारे में तबादले ख्याल करेंगे। इम्तिहान से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA नीट UG 2026 के कल फिर से होने वाले इम्तिहान की तैयारियों के हिस्से के तौर पर आज मुल्क भर में मॉक ड्रिल कर रही है। ये सिलसिला सुबह 9 बजे शुरू हुआ है और पूरे दिन जारी रहेगा। मुल्क भर के इम्तिहानी मराकज में इस तरह की ड्रिल हो रही है, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी अमले के जवान भी हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली में दिल्ली कैंट और अशोक विहार Phase 2 के इम्तिहानी मराकज में इस मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया। इम्तिहान को साफ, शफाफ और खुश उसलूबी से कराने की खातिर ये मश्क कराई जा रही है।

0: एनटीए ने बताया है कि मुल्क भर के 551 और दूसरे मुल्कों के 14 शहरों में इम्तिहान मुनाकिद होगा, जिसमें 22,79,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होंगे। एजेंसी ने यह भी बताया कि मुनसिफाना और साफ सुथरे इम्तिहान को यकीनी बनाने की खातिर कई मरहलों वाली सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। इसमें सीसीटीवी के जरिए निगरानी और आधार पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक शामिल है। इसके अलावा पुलिस मुहाफिजत में इम्तिहानी साजो सामान पहुंचाने के लिए जीपीएस की सहूलत से लैस गाड़ियां भी शामिल हैं। कल ये इम्तिहान 2 बजे से 5:15 बजे तक होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में रियासती सतह के बैन अल-अक़वामी योग प्रोग्राम में मेहमान खसूसी होंगी। ये प्रोग्राम सदर के गैरिसन ग्राउंड में सुबह 7:30 बजे शुरू होगा। सदर जमहूरिया आज शाम भारतीय फिजाइया के खसूसी तैयारी से जबलपुर पहुंचेंगी। हवाई अड्डे पर गवर्नर मंगू भाई पटेल उनका खैर मकदम करेंगे। सदर जमहूरिया योग के प्रोग्राम के बाद रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जाएंगी, जहां वो यूनिवर्सिटी की 36वीं जलसे तकसीम असनाद में मेहमान खसूसी होंगी। इस तकरीब में रियासती गवर्नर भी शामिल होंगे। सदर जमहूरिया के दौरे से पहले जिला इंतजामिया ने डुमना एयरपोर्ट, गैरिसन ग्राउंड, सर्किट हाउस और रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के 15 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन गुब्बारों और पतंगबाजी पर पाबंदी लगा दी है। योग का बैन अल-अक़वामी दिन 2026 कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस साल योग का 12वां बैन अल-अक़वामी दिन सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योग के मौजू के तहत मनाया जा रहा है, जो हर उम्र के अफराद के लिए योग की अहमियत को उजागर करता है। इस सिलसिले की तकरीबात के हिस्से के तौर पर वजारत सकाफत मुल्क भर के 100 तारीखी और नुमाया मकामात पर खसूसी प्रोग्रामों का इनेकाद करेगी, जिसका मकसद भारत के मालामाल सकाफती विरसे और योग की रिवायत को यकजा करना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: नई दिल्ली में वाक़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने योग के दिन की तकरीबात से कबल योग के लिए दौड़ और एक खसूसी सेशन का इनेकाद किया। इस मौके पर रोजमर्रा की जिंदगी में योग को शामिल करने पर जोर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने कहा कि योग को सिर्फ एक दिन तक महदूद नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि पूरे साल बाकायदगी से इसे करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ आसन और वर्जिश के जरिए रोजाना योग तर्ज जिंदगी से मुतालिक बीमारियों पर मुअस्सर तौर पर काबू पाने में मददगार साबित हो सकता है। योग के बैन अल-अक़वामी दिन की अहम कौमी तकरीब कल कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर वजीर आजम मोदी की क्यादत में मुनक़िद होगी। इस साल सकाफती ताल्लुकात के भारतीय कौंसिल ICCR और बैरून मुल्क भारतीय मिशनों के इश्तराक से दुनिया भर में तकरीबन 2,500 मकामात पर योग के दिन की तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मा।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मजबूत और मौसर रहनुमा के तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ दुनिया की सबसे बासर शख्सियात में से एक करार दिया। एक अमरीकी न्यूज पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने भारत को एक ऐसे दौर के बाद इस्तेहकाम फराहम किया है जब मुल्क में क्यादत बार बार तब्दील होती रही। उन्होंने मजीद कहा कि जनाब मोदी गुज़श्ता 12 साल से ज्यादा अरसे से इक्तदार में हैं। इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस के साबिक सीनियर अफसर दीपांकर मुखोपाध्याय का कल कोलकाता में इंतकाल हो गया। वो कुछ अरसे से बीमार थे। जनाब मुखोपाध्याय की उम्र 77 साल थी। उन्होंने इत्तला तो नशियात की वजारत के मुख्तलिफ शोबों और आकाशवाणी की खबरों के महकमे में भी काम किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल दिवस के मौके पर मगरबी बंगाल की आवाम को मुबारकबाद दी। खबर मिली है कि इसराइल ने जुनूबी लेबनान के सजद इलाके में जबल अल राफे इलाके में हवाई हमला किया। यह हमला कल लेबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के फौरन बाद किया गया। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने मगरबी बंगाल के जिली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में बाज मकामात पर कल तक शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD केरला, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और मुल्क के शुमाल मशरकी इलाकों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। ब्राजील ने आज फिलाडेल्फिया स्टेडियम में हेती को 0 के मुकाबले 3 गोल से हराकर फीफा वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। ग्रुप सी के इफ्तिताही मैच में मराकश से ड्रा के बाद ब्राजील पर इस मैच में जीत हासिल करने का काफी दबाव था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रगति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश सिंह खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण मांझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी

0: के राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
1: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तोड़ा था उसका पुनर्निर्माण, केदार धाम बद्री धाम का पुनर्निर्माण, सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है, कामाख्या का कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
0: इसके बाद गृहमंत्री इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट UG पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में CCTV निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
2: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है बल्कि

0: इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
1: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते, और ये प्रूव हो चुका है।
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाईब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
2: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। आप हमारी नशरियात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर सुन सकते हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।

अभी आप समाप्त कर रहे थे अरमान फिल्म का नगमा। आवाजें थी शंकर महादेवन और अलका याग्निक की। अब आइए सुनते हैं तेरे मेरे प्यार फिल्म का नगमा। आवाज है श्रेया घोषाल की।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मेरी पसंद। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सुबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में लीजिए अब सुनिए ब्रज लोकगीत।

0: day for the state of Bengal, a great day for the farmer brothers and sisters of the country. A Bikasit Bengal, a Bikasit Bharat, a developed Bengal, a developed India. The resolve to make the country a Bikasit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day, because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India, with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams, and we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
1: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने और जिस तरह की बात चल रही है ये एक बहुत बड़ा कदम है और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी और खास बात वैभव यहां की यह है कि इस किस्त से 2 करोड़ 18 लाख से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं उसमें भी एक बड़ा कदम है और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जा रही है जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी और ये भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी और उससे ज्यादा हो गई और अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4 लाख 28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं तो वैभव ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री कि किसानों को आगे रखना किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है
0: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ टू मेक द इनकम्स ऑफ द फार्मर्स गो डबल एंड ट्रिपल व्हेन द कंट्री डेवलप्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी पर्सन इन द नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री द पॉलिसी और द बेसिस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ ऑल द मिशंस व्हिच इज अंत्योदय व्हेन वी कीप लास्ट मैन इन माइंड वी ऑलवेज कीप द फैक्ट इन माइंड दैट यस We have to grow the country. We have to make the country develop. But we have to keep each and every person in the policy, in its execution. We have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi. And apart from him, the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi. The Chief Minister of West Bengal, winning a historic election, Sri Suvendu Adhikari. Sri Rajiv Ranjan Singh. The Union Minister of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union

0: Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests and Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country in district and block levels and gram panchayat levels with the support of the KVKs and local agriculture officers, celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous training of the next, they are all happy and they wish to see the Prime Minister and they wish to see the promises which the Prime Minister did come true.
1: बिल्कुल वैभव जी साहब ने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य अतिथियों के साथ विशाल जन समुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है और जैसा कि हमने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री आर एन रवि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुविंदु अधिकारी, माननीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय रेल सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं.
0: Absolutely, to see these ministers that the people are waiting for. And the people have actually voted for these ministers who will now be gracing the stage. It's actually a very exciting day for everyone. It's not just the financial benefit that is being transferred. It's not just the fact that the PM had made a vow. He had made a promise and that promise is being coming alive. That promise is, proving to be correct. But the fact that, yes, we are on a mission mode. We as a country, as a people, we are going towards the fact that we have to make this country develop. We have to make a Viksit Bharat till 2047. That's exactly the aim of the Honorable Prime Minister. More than 1 crore farmers are expected to connect to the main event via video conferencing at the Krishi Vigyan Kendra, the KVKs, ICAR institutes and universities, farmer producer organizations, agriculture mandis, PM Kisan Samriddhi Kendras, Prime Minister, primary agricultural cooperative society and state district gram panchayat level, village level functions. With the release of the 23rd installment, the total disbursement under the scheme will exceed 4.4 lakh crore since its inception on the 24th of February 2019. Siddharth, we have to agree to the fact that yes, everything that might be happening around the globe, this promise never loses its importance.
1: बिल्कुल. तो अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इससे पहले हम सुन लेते हैं अंग्रेजी में समाचार.

0: Sone Ki Chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion, brethren, we remember all those great years during the critical years of 1946 to 1947. Dr. Shyamal Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. Yeah. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
1: बिल्कुल अभय, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी, तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास, राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है, और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है, और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहां का साहित्य, वहां की कला, वहां की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
0: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, दिस इज द प्रॉमिस विद व्हिच द गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्मड इन बंगाल आफ्टर इयर्स एंड इयर्स ऑफ इनजस्टिस। नाउ वी सी दैट द गवर्नमेंट, and this will be a government which will be a government of double engine. And today's function, Siddharth, it's not just something that we are seeing for the first time. This is the 23rd installment. This is a direct transfer. We don't just see one promise, we see many promises together. We see an actual execution of the Digital Bharat. We see no middlemen. We see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place when an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now, and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country. Along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi, the following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity and limited credit flow. Imagine, we are doing so many steps. We are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers. It's not just the money that is going to the farmers. It is also fertilizers. It is also the good quality of seeds. It is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है। और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा।

0: 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्रीस्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी। तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट।
1: एब्सोल्युटली एज़ यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी। And I want to say that it won't just be the procurement of things that will happen in a very smooth and a very functional way, but the whole line of credit. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways. Then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers. And then when you get those rates and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government. That is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Vikasit Bharat.
0: बिल्कुल, विकसित भारत की बात आपने की है और एक सरकार की एक जो नई पहल है, देश में जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिल मैन की भूमिका है उसको खत्म किया जा रहा है ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके। आप ऐसा सोचिए कि वैभव, किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है या वो प्रोडक्ट होता है, उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है कि देश में ज्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ें ताकि एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले। जैसे आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए, और जितनी भी सारी उसमें इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में जहां जहां किसानों को, चाहे हम किसान की सॉयल की बात करनी हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो, चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो, आज ड्रोन दीदी की बात होती है तो किस तरीके से, आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, हम हर तरीके से वैज्ञानिक रूप से किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, द वर्ड दैट यू यूज्ड एंड यू हैड यूज्ड दिस वर्ड अर्लियर एज वेल, व्हिच इज सशक्त बनान, दैट इज टू मेक द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एम्पावर्ड। हाउ डू यू मेक देम एम्पावर्ड एग्जैक्टली, दैट इज द क्वेश्चन, एंड दैट वाज प्रोबब्ली द क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही हैड इंट्रोड्यूस्ड द डिजिटल इंडिया मिशन। बिकॉज इमेजिन अ फार्मर सिटिंग इन वन कॉर्नर ऑफ अ विलेज समवेयर कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, बट ही नोज एंड ही ट्रस्ट the government, and then he realizes that now is a scheme wherein he will be getting a direct transfer. What happens? You go and you get a mobile phone. If you do not have a mobile phone, or if you do have a mobile phone, you learn how to get those applications. That is a new chapter, a new phase in the lives of those farmers. You do not have to depend on anyone else. Now you are self-empowered, you are self-reliant. आप आत्मनिर्भर हैं कि आप स्वयं वो फैसला ले पाएं, आप स्वयं उस डिवाइस से, यूजिंग दैट मोबाइल फोन यू कैन डू वट एवर यू विश टू, यू कैन गेट दैट डायरेक्ट ट्रांसफर, यू कैन चेक योर बैंक अकाउंट, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया मिशन, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, यू कैन गेट ऑल दोज बेनिफिट्स टुगेदर। एंड हाउ एग्जैक्टली डज दैट हेल्प यू? इट हेल्प्स यू टू बी अ फार्मर ऑफ द 21st सेंचुरी, इट हेल्प्स यू टू

0: समय हम देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है और वो मंच पर पहुंच गए हैं और चारों तरफ से ये लोगों की आवाजें उनको अभिवादन करते हुए उनका स्वागत करते हुए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और
1: समर्पण करेंगे.
2: The Honourable Prime Minister on the stage sitting along with the Governor of West Bengal Shri Arun Ravi and the Chief Minister of West Bengal Shri Suvendu Adhikari. People craning their necks now.

0: आपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: द रिलीज ऑफ द पीएम किसान निधि, द 23rd इंस्टॉलमेंट बींग डन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी with a smile on his face and a confident handshake. Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country, various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways, so many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने.
1: It relates to the goat production, the laboratories that are there. It relates to the ports that are being developed. It relates to the farmer producers that will be given a fair share in the market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat, of a developed India by 2047.
2: जी हाँ, प्रधानमंत्री अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया, और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई. आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं.
1: एंड सिद्धार्थ, मोर देन 2 crore वुमेन बेनिफिशरीज आर अमंग्स दोज फार्मर्स हु विल बी गेटिंग दिस डायरेक्ट ट्रांसफर, दिस इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि. इमेजिन द लेवल एट विच दिस scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is on stage, Prime Minister Modi.
3: Mahadev. मंच पर विराजमान राज्यपाल आरएन रवि जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य

महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है।

गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक, गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वहीं विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की ये तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। ये ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं।

किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए, और आज भी वो मूल्य इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी, और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा, इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस

सेना जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, इससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया।

राज्यों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जनकल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन, और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट माने से काज शुरू होए गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था,

वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए टिहरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी। गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के 4 जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और जारगाम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थाम्बे ना, एखोन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं। वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं। देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत

0: अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें और हम सब मिलकर हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है जिसे हमें कभी भूलना नहीं है और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने, इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards the future, towards a Viksit Bharat developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूं। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने आज कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9

करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से

0: दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ ये अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल रहे। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। बोलीविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने देश भर में ईंधन की कमी, रिकॉर्ड महंगाई और लगभग 50 दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़कों की नाकेबंदी के बाद पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने चौथे ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government in the presence of Mr. Modi, the President said, India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship. Addressing the public gathering, Prime Minister Modi lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India.
2: Odisha mein aarthik gativiidhiyan, nivesh aur udyogon ko aakarshit karne ka samarthya aaj nazar aa raha hai. Kendra sarkar ka vision hai purvi Bharat ke vikas se Bharat ka vikas. Isliye हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: The Prime Minister today inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth around 47,000 crore rupees across multiple sectors. Later, the Prime Minister arrived in West Bengal for a two-day visit. He took part in Paschim Bango Divas celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district. He also released the 23rd installment of PM Kisan scheme worth 18,880 crore rupees, benefiting over 9.44 crore farmers across the country. Mr. Modi participated in a grand function to celebrate the state day. Along with Chief Minister Shubhendu Adhikari, he launched, dedicated and laid foundation stones for various development projects across railways, agriculture, rural development, fisheries and animal husbandry sectors. The Prime Minister will commission 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata tomorrow, designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers. The vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. The Navy said the vessels have more than 75% indigenous content and involved over 200 micro, small and medium enterprises, highlighting the growth of India's domestic shipbuilding industry. Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah today inaugurated Sri Ambabai Temple Development Project in Kolhapur of worth over 1,445 crore rupees. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and other dignitaries were present on the occasion. Addressing a public gathering, Mr. Shah said the Sri Ambabai Temple located in the historic city of Karvir is a major center of faith for devotees from across the country.

0: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल।
1: मीडियम वेव चुकी बेनिफिक हर्ट्स मीडियम वेव सोचिए बेनिफिक हर्ट्स दोनों एफएम चैनल ग्यारह एशिया मेगा हर्ट्स का जो आकाशवाणी करके

0: कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: आपकी चाय।
4: अरे यार, ये बाइक किराया दवाई कैसे इंतजाम करूं? एक तरीका है, अच्छा पैसा मिलेगा।
5: कैसे?
4: अपने बैंक की तफसीलात दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
5: इतना आसान?
3: अरे काहे का आसान, ये मनी म्यूल है, दूसरे के अकाउंट से गैर कानूनी पैसा मुंतकिल करते हैं, जुर्म है, जेल हो सकती है।
4: ना यार ना, मुझे जेल नहीं जाना है।
3: अपने बैंक अकाउंट को महफूज रखें, किसी को इस्तेमाल ना करने दें। RBI कहता है
6: जानकार बने, चौकन्ने रहें।

0: rangi businessun laske tangmifia lenchik akashwani rocks yanti chonglenun localin ya fayuli thogikain akashwani stanchain customer un sapilepis cups mangmu darine antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chikika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu dona ringin seyot booking befia call bazat 8700014242 ka
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
2: 8700014242। सुनो ना।
1: हाँ।
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ,
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में

0: फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: एलुमिस बनी नूह इंसानी रुख्स बचाई हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम।

आकाशवाणी करगिले कना गांधी कसली छिरपुआ स्नाबिन युथखन रिंचन यनखनुन सगा यांग छिरचिक यंति मेजबान सज्जाद अली शुजाती जुना सलाम फ्रदमचन सोशिक गांधी कसली दिरिंग छिरप्यांग युंग अतेस दिरिंग गांधी स्कुंदुनी नंखांग स्ट्रुलबी खागोनिस कोरे लोफशेदुन सा यंते रिंचन स्नांगान छापा लेपचुपी फ्रालुक्सबेत गांधीजी स्मोले दुख नंखांग इछिरुन चा स्ट्रुलचस्पु निफिया सोमा खाचिक मेनमेन इनंग नटाली नंगपु नि मुंबई ना लंदन यंग युतखानी नंगपु चोस मेनमेन दियानु ड्रोनपोन ला ओस्पी यंग दचो साजो सामान जिक जापेर गोस्पायोतिन गाव नटालियंग हिंदुस्तानी बेरस्टर चिकना कोमी गोयोत बखन गोस्क्यों चिगेफिया ब्योरचन ना लुक्सचन सोरचाचो देफिया ngas darbani mingchen min chuksiyot bi malchanu rtemora chunche nangchik lens yangdu rtemu base chokhatangs ngas krotpa drangs bi zanre chose tusfot patpin innang nginanga rtungkar angres achunon nangyambo hindustani gakhanun leben luspatpin defia nanglasil jitpu nika kimo phogan losetsuk ganang chigang inna नंगलास बखनचिक यांगदुन नोकरचिक मेटखमेट छापिन इननांग ngan नोकरुन सपना नोकर यांग दुक्समीनी जोस्तेगा जापी जोस्तामायोंस ngalengembo ni yang drasot achonegang dukpatpin duminma zankal khanchigang ni nangi zanjose zostega duksiotpin daftari kalarakpong ni der dukse dyana ngalengembo zanjatpin ni sambenuk dizati tajurbang nga thikchat phete duk duk ba innang dyun nang nyambong nyambo ni miseang nuk talakh tajurbari gang thong masum zaptung e chirbase nga

0: जबरदस्ती में पा दिया चुसला चिचीज जंग चितों फीलिंग शी या थॉट शी एक्सप्रेस बुक सम नगत तो खा दे फ्रीडम पंग माथम नगत तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन नस्ते चसे
1: बक्सी जो जो बराबर यरा अति यंग फंडामेंटल राइट्स टू एक्सप्रेस एक्सप्रेशन अति फंडामेंटल राइट इन जो माता हिंदुस्तानी लेवल का जने से शहरी माता जो हुकूक से जो आलमी लेवल का यरा यरी थॉट्स पो एक्सप्रेस बा मयन ना डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी मिसाल डेमोक्रेसी मसो या राइट जी थोप से ना तो वायलेशन हो तो ने इंटरनेशनल लेवल का ह्यूमन राइट्स यंग वायलेशन सिन अब तक यारा दिया स्पेरा जरे दिस पेरो मना यारा इंपॉर्टेंट चीज मिसाल नाता राइट एक्सप्रेशन सुयोत जरे ना यर इज यरी एक्सप्रेशन इज जरे का यंग ची का तो यंग ची कानून यंग ची राइट पो मैक्सिमम यारा दी हिंदुस्तानी लेवल नाती लेवल की चीज है बना यारा राइट टू एक्सप्रेशन यारा हिंदुस्तानी फंडामेंटल राइट्स द राइट टू एक्सप्रेशन पो यार फायदा लेने यंग ची राइट ची वायलेशन बचिन उदू का तो मावा ना यारी यारा मिसाल यारी नजरिया और यार पूरा हुकूमत सफल है यारी फंडामेंटल राइट्स अगर उदे राइट्स पो सिर्फ महदूद लेकिन चीज चीज कह रहा फंडामेंटल राइट्स यानी राइट्स टू एक्सप्रेशन महदूद यों चीन महदूद जरना ना यारा लिमिटेशन जो चीन यार इज यारा राइट टू लाइफ या राइट टू एक्सप्रेशन यो जरे ने यार इज पूरा यंग ची ओदे दिन राइट टू यारी एक्सप्रेशन पे क्यों से यार इज यंग ची वायलेशन का तो बना दो चीज है चीन यार इज राइट टू एक्सप्रेशन यारा सो लेकिन यार इज यंग ची कानून ची उल्लंघन सो सिन लेकिन हाँ यहाँ ची यारी मेथोड यारी थॉट पो या राइट टू एक्सप्रेशन पो यारा आलमी लेवल वायलेशन का तो छा ना जो ह्यूमन राइट्स ही वायलेशन इन बख्शिश
0: बख्शिश जो छा ना यारी मोल भी तो न पदना चुकी ना था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रियत ना तो दोने मोता
1: लिमिटेशन लिमिटेशन जो रिस्ट्रिक्शन जायत
0: रन नतस ना जकबर गोस की यारी समझो तो सुख शुद्ध तो की गाय जस्ते यहाँ चिक चाह नोट क्यों चाह ना यहाँ आते जमर या प्रोवोक बेटा कि इंसान इंसान शिकार छे या वायलेंस फिला या दो चो गैदरिंग का तो बेगा उनकी आती मतलब कौमी सलामती फिला गस्फो इतना का तो दोन सकनातस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन
1: है मैं जनाज दे दिया कानून यानी फंडामेंटल राइट यानी चीजिक राइट टू एक्सप्रेशन यानी लिमिटेशन हो चीनी यारिस यारी देन यू राइट टू एक्सप्रेशन पुई फ्रोच चुपी मीना यंग ची वायलेशन का तो बना यारिस कुछी बसिन यारिस आन राइट टू एक्सप्रेशन ही या यार ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बसिन बख्शिस
0: बख्शिस छन दखसम सुनल ना यारिस जो सहा जुमाता बमोन नंबो तशद्दुद पु ख्यारिक मनस नन नछिन
1: यु जरे
0: छन ह्यूमन राइट्स पु गाता मन इंसान चंग फेशेश में तहर जो बमो बुछे जरे सु कर दी तशद्दुद पु छन इन फेश संग गाते दखसम दिया बमो इस कोला चीज जो नगा तो गा बमो चाह जो खुद नम दुसम बगोशस इनकी नी हुकूक रियो तां दोन सख वायलेशन छिन दुजरे को गतो तक्स पुछाचेस इन गा हाथ पे कहले बना खुद सब
1: दिस पर मन इंपोर्टेंट यरा दी बस ना लगाया उस पर चीजिक रंदी आलमी मुद्दे न्यू ह्यूमन राइट्स पो यरा जर नंगा जर जरा अबोमो बुचे का तशद्दुद रंग वन नस्ल मजहब उदूनी का तशद्दुद छाना या बिछड़ा मिसाल के तौर पर तपा का तो का तशद्दुद छाना को एहसास हो याद तो लगाती बों क्या बुचा हो क्या बुचा ना खासकर या बों बुचा ना या दोनों सुनसे फ्रूनी का सुनसे फ्रून ले जाना नाबालिग फ्रून मिसाल के तौर पर मन दिन दो फैक्ट्री का तो दो इंडस्ट्रीज का तो लस बस जिससे इन कोई इंसानी जान से खतरा हिंदुस्तान या आलमी लेवल का मिसाल के तौर पर फ्री 18 साल से बिलो इतना खो चीन जुगा था नाबालिग या मतलब चिल्ड्रन या चीन या माइनर या चीन उदी फ्रून ना मुतशद्दु छने दी जक पुस ले देन यंग आता जक पुस फॉर्म सो सिंजु यार इस क्वेश्चन चीज नाती बहुत बुसाने मुगा चुक तशद्दुद का तो छत नजर चीन बहुत बुसाने मो यरा तशद्दुद पो शुरू हुरं मिसाल के तौर पर नाती ना आना छ चीन डोमेस्टिक जर चीन दो खंगमेन खंगमेन मिसाल के तौर पर मेट खमे खु नामाइन मरगोशामेन बोमो बुसाइन नाड़ी चीन नाती दक्षम ना अल्हम्दुलिल्लाह दी सोच पो नाता नाती मिसाल नाती डिस्ट्रिक्ट या नाती नंग इस पर ता नाती सोच पो थोड़ा चेंजिंग हो जु कि गचुक ची बस यो ना या बोमो बुसे खुरी खुंती या फ्यापे का यो ना या जु नाती समाज हिंदू सोच चेंजिंग ची अल्हम्दुलिल्लाह ना कंपेरिजन
0: यो गचुक हो जु
1: हाउ यू या अवेयरनेस इक तंग मा या अवेयरनेस जरिए का या नाती गचुक जरिए ची कयो ने स्ना बोमो बुसा जु सोच पिन क्या बोमो इन चम से काबिलियत न सबक बाहर लिमिता बुसा सबा तांचा कुरान चम से काबिल मत न सांग सिल बा बमो बुसा सांग कमजोर न सा सा गा तांचा उद्या अध्या कुरान तशद्दुद डोमेस्टिक वायलेंस दे करने शुरू यंग्स पर जी जी गरा अच्छी मना मैडम ची गिजर बत को जर सिन नाती न तशद्दुद कुरान मना स्थान का तो न जमाने दक्षम न में जो श आता इन जरे न पेनु ची बा लोजर बन आता ले शाओ छोपोरे पो अमा जरे शाओ सुनसे ता तशद्दुद दे करना शुरू छ चिन यारा मने दे मिसाल पंगा मा बेहतरीन जोर ची जर बना नते तशद्दुद जे बना मस्ते ची ची कर दूं चो ता तशद्दुद में मैं मिसाल ची जे दे रंगस रंगते मिसाल ची नाते जर ने जुलुम जर ने मत खमे ची ची सच्चा ता जुलुम जे दे असली जुलुम मिसाल पुखरा यारस यारंग राजी में पेरी गुए का ना टोपी को से यहां ची गुए का तांचा जुलुमिन लेकिन जुलुमी हाचिया खची खेमे खची कम ची दाना

0: cha zimbal ri bulir kare banyan ri la se jon chong sang cha zbya la na ta cha zwa ri ta se jon la gyat ba zwa zwa se jon den ba cha
1: bakshi yen te chas ta ba chu pa ha ju chong cha na yen te gachuk gachuk duni ka sabzi ri ya gachuk sekat pi ka yen te chi ri ta spin da rang chu pi
0: nga cha sekat pi ka snal la nga cha alu ta spin ali manal leg bakcha ta degen alun chomar ba se zuza ba de chi na cha chun me tas pin chun mo phaj bin chek ta bingan che ta degen a tamatar chek ta degen yas pa na de da sakti buri guzare so se do la sakti stap ta chek no ta de chi mo sum po sakti gramor yon stap chek sa yon o do la sakti do la den so se na tere mere dang de je kamun khran se yo
1: उन्होंने दी सेकना दी सेकेट पिकना गचुक सब्जी रिक्ता बना यंता फन के यों मसोरिन दुक
0: सब्जी ना अता मन लाम से अता मन मेहनत बाजे तब ना ना कोना मन आलू तब ना यों चे दो गोभी तब ना या फूल गोभी चे नुक बान गोभी चे नुक या जुबस नारे ना अता मिसालन ग्रीन हाउस जे होते प्लास्टिक का तो यों ना बिंगन चे नुक शिमला चे नुक टमाटर चे नुक ये जो सख चनों आते तब न नमन जो सख चनों आती गेट बात है ठीक दिन आती मेहनत ही ठीक आते मेहनत बार वो चन्दो
1: बाकी सूर्य जरे ग्रहमो युल हाँ आते ग्रहमो युल इन चना दीसे का करगिल सान दीसे आनो चना का तो आता फरक शे से दीसे का यंते गा सब्जी तब से यंता छा सोर या गा सब्जी मिछा सोर दीसे का कि हर सब्जी तब ना छाचा दुआ कि आती से का या दी सूर्य से का सब्जी खचिक छामिन दुक
0: सूर्य से का ग्रहमो जर चो छाचो ना जा करगिल आचा का जोश क्रम पर ना आती देखना चेनो गोभी और चेनो बान गोभी फूल गोभी मना हाग वाक चनोक मगर कोई बाहर पोला या बिंगान रजस चारे आल जिस कान बुगे बाहर ला चाचा दो तो गाती चाचो चनोक मगर गाती स्टोन जो ना जी स्पियाल जे छास पे नोक बुली ग्रांच जो मन गाती दस जना बुली को ग्रामोस खेर नोक जो चो ना मन सब गाती जाने चनोक मन मत कर यू लतास भगवान मन पुर गाती ने चनोक सोंकों बात से गाती दे मन खेमो चनोक मन छोवा चनोक या दसक थे चनोक मन सब गाती ने चनोक
1: माशाल्लाह यहाँ दू ग्रांड चिक दू दिर छामिन दू जरखा निस्निया चिक चांग मेट पेन सो पहागंग मा छाचुक चले यंतेस दी सब्जीन यंता पैदावार सों सरगेप न यंतेस घर खेरे चोमात या दू यंतेस गचुक जोस्ता चिका चोमात यंता आशिनमोन गंग मा लोकसे गचुक अल्लास बात गचुक चिका यंतेस दी सेलेब हेलेब ग्रुप पोस्ट रुलिनत
0: Macam dia tempe kan kata dia jurma betah spoi wakat dia kasar yang sel sar lor saya cina um sar lor saya yang sel spoca dekan ayah cu tang sel krans panang kata jurma baca dekan kata dole chin cruise bin cruise tang cah dekan ni sun ma cowok cah kata dia pada pada berbalik dan baca ya so macam cah sus dekan dia ande dia senang kata senang senang kata alur tas pin dari kata dia sun ma tapi dia cina kata dia odun tas sel nado ni kan kata dia nak kacin dia cok dia cek cok zat tas sel jun kata fresh bean po tomato po bingan po dia dan macam bahasa tas cok dan dia cek cok tas sel zat
1: acha ni kerkan cik mirnya cik zere milus patu paha yang tak kerkan cik
0: kerkan ji mirnyet bezere mane rushamino mane kone chi tap na kerkan nyacha dok ngatan sak den na sonse chek sonse den bazen mane kerkan nyacha dok kerkan na chang skod mo chacha mino gambu kora mata tap na mata bo ngate ji gena kal ban kone ka den na poni chok ngati gena lenen no
1: bakshi chan di selep help group bu achino mone fila tam chek fan khe chacha dok deskola chek
0: Selain itu grup asalnya pun pelanam, bankernya mana mahu cuci dok. Ngata dia ngata segitu, bate ngata minat bahasa ngata tap sedena bana ngata peni cuci dok. Ngata asalnya mulai ngata cina anu na cetong cipa na yang ngata nampol lah masuk pa ngata cina anu na pulau cah bas bisi na ngata gan ngata sedulur datang cina ngata piknik cipi lan cina ngata cok dia na ukur dia kuah yang sedut pinga ngata zarurat buten no.
1: Cina selain itu grup pur demo bahasa stul birfila cirgo cah dok. खासकर दी सेले फेले ग्रुप को कामयाब चिक छेक जरे अर्गेला जोस्ता चिक स्ट्रुल बिफिला चीर घोषा तो
0: सक नता गा मा चिक सोंसे खा चिक सिंग चिक मन सक अछन मन चिक सोंसे या जबस न तपचा देगे न गाता दे ग्रेन होशे के जरूरी गाता ग्रेन होशे बशा दो ग्रेन होशे को न गाता वा खते गाते न रोज जुक पचिंग गाते तप न देस पोचोस न ला जाचा सुन न तबा न जे सुन मो बिनो गेम न देर गेम न गाते स्पोचा दे पर तबा न स्पोचा न्यो से खेर खानियो न मन दे न खा गाती न आयो से खेर न ने न देनो को बार चिताब ना गते बार आना दारे खचुल न चोज जला बो तहले बेत गोन लेबेत जाना फुलु खेरे गते जाने आता बना गता गोन छनो बार छनो गता दे माने खीरा वरा सब जाना देजोस पे चोक बुंदला बतना जोस खानी फुलु ला जानो छ

0: Councillor Advocate Riaz Ahmad Khan is program pyang phespa don phezos te ka khaklens dyaona choksla krishi vigyan kendra kargile gobar Dr. Nasreen Kacho Sekheti Deputy Director State Nodal Officer Pradhan Mantri Kisan Razia Banu Khaspa Dr. Mansur Hussain na Dr. Nazir Hussain duna mahkame khakhurun na sakhyat yetkhanun sagang ayshuk se ikhyot pin The Oxla Pespatron Post does down Punagragan Zille, Stone Chungis, Basan Sakat Yatkan Mangma, the Sikim Peng, Ishur Saksumi receipts here putanchas, Hokuma, the Shosna, Yalbachan Mimasun Sukpas, Gotemika, Fankuna, Suhuliatun, Lepchuk Pir, Tian Polar Taxna Sons in the Re, Sir Set, Kozian, the Sikim Penal Jones, Ishur Saknis receipts here put, Dunmanatans in the Ren, Daxan, the Tirpus Basse, Sakat Naget, Bat Bakanun Lapios Gami, and Uk Lakchepchen, Rox Chacha in the Ren, a Serin.
1: पीएम किसान स्कीम है अभी जैसे आपको पता चला कि लगभग 12,000 प्लस बेनिफिशियरीज को रजिस्टर्ड करा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मुझे लगता है कि इतने रफ टेरेन होने के बावजूद इतना दूर दराज जो हमारे गांव है एक दूसरे से इतने दूर है हमारे होते हैं तो इस टेरेन में अगर 12,000 प्लस अगर बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड है तो ये मैं मान सकता हूँ कि जो हमारा डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और केवीके कारगिल इनके कोलैबोरेशन में ये घर घर तक ये स्कीम पहुंची है और बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है वो जैसे अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हमारे मैम ब्रजे ने भी बोला अगर फर्दर अगर किसी को लगता है कि वो एलिजिबल हो तो वो अपना खुद ही फॉर्म चेक करके जैसे नेट पे अवेलेबल होता है अगर वो एलिजिबल होता है तो वो फिर भी रेडी है डिपार्टमेंट अभी भी उनको रजिस्टर करने के लिए प्रोवाइडेड जिस तरह से जो डॉक्यूमेंटेशन है या जिस तरह से उनका एलिजिबिलिटी है उस पे फिल होने चाहिए
0: पीएम किसान हागवे प्रोग्राम पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे दफ्तर लगरल सिरवास गवां जिले सख्यत गेतखन ना कोऑपरेटिव वेदावराव ने नुमाइंदा उन सगिस खकलिन स्पिन देवरिया प्रधानमंत्री किसान सिक्किम पुना एलोसो सरकारी सिक्किम मिनिस्ट्रोलिका मिमासुन लयतखन फंथोन स्कूल ला सल्पो बसे खकलिन खन ला हगोन तास खोजन कोऑपरेटिव सोसाइटी उन सख्यत एदाराव ने छोजना सगेत बत बखन उन सक खुचन स्टेमिना लेनिन यतखन गुंबा उन को लास्ट साल पो बसे अहगुन तांस पुर्गी खबर उल्ला यंते सा काशवानी करगी लिकन स्ना बेंचिगत भारत इस ब्रिक्स यूलोनेस गैस्ट्री इति स्ट्रोंग लुक से मुशीर ने जखमा इस पर ग्रफसिक चंद्राल न फल्लागा ग्रल सिर बचाइन गवे गोयत पु उस गैस्ट्री इति स्ट्रोंग लुक से खसपा अजी ढोबालिस बचाइन जर है इजर सत गवासला ब्रिक्स मेंबर यूलोनेस सलाहकार न छपाओनी गवान सगिस म्यूल लयखन क्रिम से स्ट्रोंग लुक से गखिलने का स्पेरा अंतहा चाइन Deputy Commissioner Zanskar Omkar Rajendra Spenzela Top na Soma Zilenuk Streskan Rangdumna Abrani Gam Yuloni Zikskorbase Mimansuni Gripshatun Nashmangun Saganyan Inchik Yarya Silasuni Iftaluks Bas Divasla Khonembo Tehsildar Zanskar na Tehsildar Tesuru Public Health Engineering na R&B Mehkamoni Executive Engineer Livestock Development Officer Bulak Development Officer Karshaduna Emutaloka Khakhurun Sak Ashuk Se Ekyotpin Diabaran Deputy Commissioner is Gamuluni Mimasun Natuk se Kongayot Khan Pramachik Shmaun Sak Inyan Irgyapna Mutaloka Kakurun Lad Yishmaun Sak Faltebe Mina Gomba Lenzere Kaskun Tans Diabaran Penzela Tobika Dulin Yot Khan Yergyas Lasun Sakan Taluz Benchik Bidiona Emehkamon La Laktut Basedi Lasun Kargya Bozere Kaskun Sakan Tang Masun امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اس کھچن لکسپشن لیڈر از استے کا وزیر اعظم نریندر مودی استودرا بنچ گرگیانا کے صدر شی جنگ پنگ نیم بو میول سق بسنگ مین بیون گو تو نیا نہ چی گن زرے اثر بسوں امریکی نیوز پورٹل پلا تاس کن انٹرویو چی گن صدر ٹرمپ اس نل لز گستری تیان بار بار گو پلا گرجا یون چی گلوس پت پنزرن دخسن نشتن پو حکومت چی گلدان ہر گل بیلو چون اس نفل لگا تھگمت یار یسن ملیاں یون سے دخسن یولنس کو بریان لختوت پو دنما basang lakchep chan song se injere eser basong Indian Information Service pe dunma senior officer Deepangar Mukhopadhyay Kolkata galen rtaspe mi nazar na semetes itlaat na nashriyati wizarati lokso fyoksuna akashwani khabar ne mehkamani anuk ullas baskhan in min صدر جمہوریہ دروپتی مرمو نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن دنہ وزیر اعظم نریندر مودی درنگ پشچم بنگا دِوس شخ پنظم سے مغربی بنگالی مماسن لا مبارک بات تاس

0: Fayuli Wazir Azam Jinab Narinder Modis Bharati Mimang Sunna Yambo Grakcha In Khuri Singh Speran Yongmi Aditi Jaga Nimi Baja Chukshika Program Man Ki Bati Strolika Akashwani Station Gangmas Di Program Pong Yambo Nashir Bachain Domen Ma Durdarshani YouTube Channel Dona Prasar Bharati App News On Air Ika Di Program Pong Nashir Bachain Idu Jagpazat Yongmi Aditi Jaga Nimi Baja Chukshika Program Man Ki Baat
1: Jangi Business Un Laske Tangmifia Lenchik Akashwani Rox Yanti Tsonglenun Local In Yafayuli Torikain Akashwani Stanchain Customer Un Sapilepi Scaps Mangmo Darinayantes Nang Yadaftar Yahati Kajuksenang Banganchain Akashwani Ga Kender Chikika Advertisement Booking Akashwani Lokso Channel Unika Advertisement Tangchao Samo Dona Ringin Seyot Booking Befia Call Bazat 8700014242 Ka
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
3: 8700014242 सुनो ना।
2: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: एलुमिस बनिनु ही इंसानी रुख्स बचाई हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in।

0: जानकारी सुनिश्चित करनी होगी। जब जम्मू कश्मीर के युवा नालंदा की परंपराओं से जुड़ेंगे, जब भारत के नौजवान दुनिया के अन्य देशों के युवाओं के साथ मिलकर काम करेंगे, तब केवल नॉलेज का नहीं बल्कि विश्वास, मित्रता और शांति का भी निर्माण होगा।
1: वाज़ह रहे कि इस तकरीब का इनेकाद नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल, नवा नालंदा महावीरा और कश्मीर यूनिवर्सिटी के बाहमी इश्तराक से किया गया था। एलजी मनोज सिन्हा ने मगरबी बंगाल के यौम तासीस के मौके पर वहां के लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल ने मुल्क की जंग आजादी में कलीदी किरदार अदा किया और साथ ही वहां के लोगों ने अदब, आर्ट, संगीत और साइंस के शोबजात के इर्तका में अहम रोल अदा किया है। सेहत और तबी तालीम की वजीर सकीना इतू ने कहा है कि सैलाब से बचाव के लिए बुनियादी ढांचे को तकवियत देना सरकार की तरजीहात में शामिल है, ताकि लोगों की सलामती के साथ साथ अवामी असासों को कुदरती आफात से बचाया जा सके। वो आज लाइसू कोलगाम में फ्लड प्रोटेक्शन बंड का इफ्तिताह कर रही थी। उन्होंने वहां सैलाब से तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए 4,96,00,000 मालियत के 2 जामे प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा। बाद अजां उन्होंने जिले के गुडर इलाके का दौरा करके वहां लोगों के मसाइल सुने और मौके पर ही इनके हल के लिए अहकामात जारी किए। वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने आज स्क्वास्ट कश्मीर में वर्चुअल मोड के जरिए पीएम किसान की 23वीं किस्त वागुजार किए जाने के सिलसिले में मुनक़दा तकरीब में शिरकत की। इस स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के 9,17,000 किसानों के बैंक खातों में अब तक तकरीबन 4,209 करोड़ रुपए मुंतकल किए गए हैं। इस मौके पर खेत बचाव अभियान और फार्मर स्कीम गाइड नामी 2 किताबचे इजरा किए गए। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राणा ने आज मेंढर पुंछ में एक मीटिंग के दौरान वहां जारी तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने तमाम प्रोजेक्टों को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी अटल ढिल्लो ने तमाम डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी है कि वो इल्तवा में पड़े मोबाइल टावर साइट्स के मामले को तेज तर बुनियादों पर हल करें। उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि वो यूटी में ऐसे रिहायशी इलाकों की निशानदेही करें जहां अभी तक मोबाइल खिदमत मौसर नहीं की जा सकी हैं, ताकि यूटी के तमाम रिहायशी इलाकों को मोबाइल नेटवर्क कवरेज फराहम की जा सके। वो आज स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की 11वीं मीटिंग की सदारत कर रहे थे। 12वां बैनुल अक्वामी योगा डे कल मनाया जा रहा है। इस साल योगा के बैनुल अक्वामी दिन का मौजू है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। इस सिलसिले में वजारत कल्चर की तरफ से मुल्क भर के 100 अहम मकामात पर योगा तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। कौमी सतह की सबसे बड़ी तकरीब कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर वजीर अजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मुनक्द होगी। जम्मू कश्मीर में भी योगा के बैनुल अक्वामी दिन के सिलसिले में तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। वादी में सूबाई सतह की सबसे बड़ी तकरीब SKICC श्रीनगर में मुनक्द होगी, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर सैयद सकीना इतू के अलावा कई दीगर शख्सियात की शिरकत मुतवक्का है। जम्मू में ऐसी ही एक तकरीब PG कॉलेज में मुनक्द हो रही है। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इन तकरीबात के इनेकाद के लिए नामजद किए गए नोडल महकमे आयुष डिपार्टमेंट ने तमाम तैयारियां मुकम्मल की हैं। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर आयुष डॉक्टर अजय तिकू ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को तफसीलात देते हुए बताया,
2: हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। SKICC में हमारे मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मैडम सकीना इतू जी और साथ में हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी डुडुलू जी बुला रहे हैं, और मुझे आशा है कि इसमें कम से कम 6,000-7,000 लोग आने की पूरी हमें संभावना है। वैसे ही जो गांधीनगर में हम जम्मू में हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी वहाँ हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे और वहाँ पर भी 4,000 लोग वहाँ पर आ जाएंगे। लोगों से ये अनुरोध है कि वो बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर, कल सुबह 6 बजे से शुरू हो रहा है कार्यक्रम, हर जगह ये कार्यक्रम हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बैनुल अक्वामी योगा डे के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने आवाम से ताकीद की है कि वो इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर शिरकत करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल कोलकाता में दीगर मसरूफियात के अलावा भारतीय बहरी फौज के 3 प्लेटफार्म INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रेग भी कमीशन करेंगे। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने अपने लद्दाख के दौरे के दूसरे दिन आज दरियाई सिंध के किनारे वाका मुकदस सिंधु घाट पर प्रार्थना की। बाद वो हॉल ऑफ फेम वार मेमोरियल गए।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देश प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करवा दिन।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं। और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है, आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकेटॉन सीरी नंबर 14454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।

0: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
1: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
0: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 8 अरब डॉलर से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
2: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ये फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.

0: सीरीज के तीनों मैच जीत लिए हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत की ये कहते हुए सताइश की है कि उन्होंने अपनी नजरियासाज हुक्मरानी और आलमी रहनुमाओं के साथ तामीरी राब्तों के जरिए आलमी मंजरनामे पर भारत के वकार और उसके असर व रसूख को नुमाया अंदाज से बढ़ाया है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में राय रंगपुर के मकाम पर जनाब मोदी की मौजूदगी में एक बड़े जलसा आम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि वजीर आजम मोदी की कयादत में भारत अमन, मुजाकरात और इश्तराक की आवाज के तौर पर उभरा है। ओडिशा में मोहन चरण मांझी सरकार के दो साल मुकम्मल होने के मौके पर इस तकरीब का एहतमाम किया गया था। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि एक ऐसे वक्त में कि जब दुनिया के कई खित्तों में टकराव और गैर यकीनी के हालात हैं, भारत ने सिफारती राब्तों और बाहमी मुफाहमत के जरिए तनाज़ात को हल करने की लगातार वकालत की है। जलसयाम से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा की पेशरफ्त को ये कहते हुए सराहा कि रियासत तरक्की के रास्ते पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और मशरकी भारत की नशोनुमा में अहम रोल अदा कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि मरकज के पूर्व उदय नजरिए का मकसद मशरकी भारत के तेज रफ्तार फरोख के जरिए भारत की तरक्की को रफ्तार देना है।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा में मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 47,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि कबायली तबके भारत के तरक्की के सफर में सरगर्मी के साथ शामिल हो रहे हैं। जनाब मोदी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद भी पेश की और कहा कि उन्हें सदर जमहूरिया के आबाई गांव पहाड़पुर में आने का शर्फ हासिल हुआ है। बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के हुगली जिले में ताराकेश्वर के मकाम पर पश्चिम बंगा दिवस तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने 18,880 करोड़ रुपए मालियत की पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त भी जारी की, जिससे मुल्क में 9,44,00,000 से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। वजीर आजम ने मगरबी बंगाल का यौम तासीस मनाने के लिए मुनक्कदा एक शानदार तकरीब में भी शिरकत की। इस मौके पर रियासत के वजीर आला शोभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। जनाब मोदी ने मुख्तलिफ शोबों में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया, मुल्क के नाम वक्फ किया और कुछ प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा। इन शोबों में रेलवेज, ज़राअत, देही तरक्की, माही परवरी और मवेशी परवरी के शोबे शामिल हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने बंगाल की तरक्की के लिए सुपरफास्ट रफ्तार से काम शुरू कर दिया है।
1: आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं।
0: योग का बैन अलावामी दिन कल पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। इस साल योग का ये 12वां बैन अलावामी दिन है और इस साल का मौजू है सेहतमंद बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद, सरगर्म और बावकार बढ़ती उम्र की खातिर योग को जिंदगी भर के लिए अपनाने की अहमियत उजागर होती है। 2026 के योग के बैन अलावामी दिन की बड़ी तकरीब मगरबी बंगाल में कोलकाता में तारीखी रेड रोड पर होगी, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की कयादत करेंगे। रेड रोड पर कौमी सतह की तकरीब कल सुबह सवेरे 5 बजे शुरू होगी। वहां हजारों लोग शिरकत करेंगे, जबकि मुल्क और बैरून मुल्क से करोड़ों लोगों के इसमें वर्चुअल वसीले से शामिल होने की उम्मीद है। इस तकरीब से सेहत, हम आहंगी और इज्तमाई बहबूद को फरोग देते हुए एक आलमी तहरीक के तौर पर योग के बढ़ते हुए रोल का इयादा होगा। मजीद तफसील

0: 84,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। ये इम्तिहान अंग्रेजी और 12 भारतीय जबानों में होगा। इम्तिहान से कबल इम्तिहानात के इनकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने आज मुल्क भर में मॉक ड्रिल्स अंजाम दी, जिनके तहत सभी सिस्टम जैमर्स, सीसीटीवी, अमले की तलाशी और बायोमेट्रिक की जांच की गई। एनटीए ने कहा है कि वो बिला रुकावट मुनसिफाना और शफाफ इम्तिहान के लिए पूरी तरह तैयार है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मुशाहिदीन, राब्ता करो, पुलिस दस्तों और मुंतजमीन समेत 2,00,000 से ज्यादा अहलकारों को महफूज, शफाफ और बिला रुकावट इम्तिहान के इनाकाद के लिए तैनात किया गया है। मुनसिफाना और शफाफ इम्तिहान को यकीनी बनाने के लिए कसीर सतही सिक्योरिटी तरीक़ेकार को बरवेकार लाया जा रहा है। इसमें सीसीटीवी से निगरानी, आधार पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक और इम्तिहानात से मुतालिक सामान की नकलो हमल के लिए पुलिस हिफाजत के साथ जीपीएस वाली मोटर गाड़ियां शामिल है। एनटीए भी सरगर्मी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निगरानी कर रही है, ताकि किसी भी तरह के गलत मालूमात और तौर तरीकों की रोकथाम की जा सके। ये इम्तिहान दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगा। दस्तावेजी अमल को मुकम्मल करने, उसकी तस्दीक और इम्तिहान से मुतालिक दीगर जरूरतों को पूरा करने के लिए इजाफी 15 मिनट फराहम किए जाएंगे। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: ईरान की मुश्तरका मिलिट्री कमान ने ऐलान किया है कि अबनाए हुरमुज को फिर से बंद कर दिया गया है। उसने लबनान में इसराइल की फौजी कार्रवाई जारी रहने और लड़ाई के खात्मे के लिए अपने वादों को बरकरार रखने में अमरीका की नाकामी को इसकी वजह बताया है। सरकारी टेलीविजन पर नशर किए गए एक बयान में ईरान की मिलिट्री कमान ने यह तंबीह की कि अगर बकौल उसके जारहियत का सिलसिला जारी रहा तो मजीद इकदाम भी किए जाएंगे। आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में 3 एक रोजा बैन अल-अक़वामी क्रिकेट मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से करारी शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से जीत ली। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी बनाई और वो नॉट आउट रहे। भारत को जीत के लिए 219 रन का निशाना मिला था, जिसे उसने 28 ओवर्स और 4 गेंदों में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। जायसवाल ने 86 गेंदों में शानदार 110 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। रोहित शर्मा ने 69 गेंदों में 79 रन स्कोर किए। इससे कबल भारतीय गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अफगानिस्तान के शुरुआती बल्लेबाजों को आउट करके शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए 4 विकेट हासिल किए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत लगातार अमन मुजाकरात और इश्तराक की आवाज के तौर पर उभरा है, क्योंकि उसका ये मानना है कि मामलात को जंग से नहीं बल्कि बाहमी बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि कबायली तबके भारत के तरक्की के सफर में सरगर्मी के साथ शामिल हो रहे हैं। जनाब मोदी ने ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वजीर आजम ने पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की 23वीं किस्त जारी की। वजीर आजम कल कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर 2026 के योग के बैन अल-अक़वामी दिन की तकरीबात की क्यादत करेंगे। और क्रिकेट में भारत ने चेन्नई में 3रे एक रोजा मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से करारी शिकस्त देकर सीरीज के 3 मैच जीत लिए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Medium wave triggering 70 kHz, medium wave sochin khapgenin 70 kHz, and FM channel riya share chik me kahar sika di akashvani karkelin mosbotani to sut rukunaminer sum chusan sukasta azadari skola rintoshan kasal rigin mazat sheikh zedi ishtina.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الرضا عليه السلام: يا ابن الشبيب إن بك